डिस्को क्या है, हम सभी जाते हैं डिस्को जीते और नाच करते हैं, लेकिन ये डिस्को

नाचेंगे खाएंगे। डिस्को के धुन पर अपने प्यारी के साथ खूब नाच भी करेंगे।